सुप्रभात। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर

0: बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहाँ तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हर रोज की तरह समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के साथ। रचना डॉक्टर हरि सिंह गौर की, संगीत डॉक्टर ललित मोहन का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर हरि सिंह गौर की, संगीत था डॉक्टर ललित मोहन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गणपति वंदना। स्वर है हरिओम शरण का, रचना हरिओम शरण की और संगीत है हरिओम शरण का।

गणपति वंदना अभी आप सुन रहे थे। स्वर था हरिओम शरण का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शर्मा बंधुओं के सुर में पंडित रामानंद शर्मा की रचना। संगीत है शर्मा बंधु का।

इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं दादू दयाल की रचना।

दादू दयाल की रचना अभी आप सुन रहे थे। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:25 हुए हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे राजेंद्र काचरू, चतुर सेन और साथियों के। भूले बिसरे गीत सुनिएगा 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे 6:55 से। इन्हें हम रिली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह पेश किया जाएगा 7:00 से। 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नींदा नाशकों का उपयोग और सावधानियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमपी दुबे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे 7:10 से। मनचाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:45 से। समाचार प्रभात का वक्त होगा 8:00 का। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं 8:15 से। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 8:45 से। 9:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा 10:00 से। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा 10:05 से। फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा 10:10 से। 11:00 से सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 2:00 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे 2:10 से। दोपहर समाचार का वक्त होगा 2:15 का। इन्हें हम रिली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा 5:00 से। इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम रिली करेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। समय होगा 5:02 का। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 से। 6:00 से एक बार फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

सदाबहार गीतों का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम में कुछ लोकगीत सुनिएगा शाम 6:45 से। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 से। इन्हें हम रिली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 7:10 से। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 से। रात्रि 8 से सुनिएगा संसद समीक्षा। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीत सुनिएगा रात 9 से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 से सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 से। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 से। ये दोनों ही समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर राजेंद्र काचरू चतुर सेन और साथियों के हैं।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे राजेंद्र काचरू और चतुरसेन और साथियों के। आज आप सुन रहे थे इसका 77वां भाग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं साहिर के लिखे गीत के साथ, संगीत एस डी बर्मन का, आवाज़ें जगमोहन और आशा भोसले की, फिल्म का नाम टैक्सी ड्राइवर।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: संदेश के बाद भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत है एसजी बर्मन का, आवाज है शमशाद बेगम की, फिल्म का नाम बहार।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे।
4: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
5: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
4: हाँ भाई, समझा।
5: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीत है सलिल चौधरी का, आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम मधुमती।

जातमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकमपि पारितम्। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेष्वपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।

अभी संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सात बज चुके हैं, पेशे कार्यक्रम सुबह सुबह। सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में युवावस्था उम्र का वो पड़ाव है जहां हम अपने भावी जीवन की मजबूत नींव तैयार कर उज्ज्वल भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। युवा किसी भी देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति और जोश और ऊर्जा से लबरेज प्रगति का आधार है। युवाओं की इसी असीम ऊर्जा, उत्साह और क्षमता को सम्मान देने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल 12 अगस्त को, यानी आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज का युवा सिर्फ कल का भविष्य नहीं बल्कि आज का वर्तमान भी है। देश के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में युवा अपनी नई सोच और नवाचार के साथ, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना के साथ काम करते सबकी आशाओं के केंद्र में होते हैं। युवाओं को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है आज का दिन। युवा ऊर्जा एक ऐसी जलधारा की तरह है जिसे यदि सही बांध और दिशा मिल जाए तो वह पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर सकती है। इसलिए युवाओं को अनुशासित रहकर अपने हुनर का इस्तेमाल समाज की, देश की और परिवार की भलाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी सी सकारात्मक पहल भी देश के बड़े और मजबूत बदलाव की नींव बन सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नींदा नाशकों का उपयोग और सावधानियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमपी दुबे।
3: किसान भाइयों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान दौर खेती का चल रहा है उसमें हमारे किसान भाई लगभग 100% किसान खड़ी फसल पर नींदा का नियंत्रण करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों ने बृहद पैमाने पर सोयाबीन की फसल और उड़द मूंग की फसल और राहर की फसल लगाई है। उड़द मूंग और अरहर के लिए सबसे पहले हम आपको ऐसे खेत बोलना चाहेंगे जिनमें केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुक्त रूप से समाई होती है। उसके लिए दवा का नाम है क्यूजेलोफाप इथाइल। जो बाजार में पैक मिलता है, शीशी मिलती है, 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर। फ्लैट फैन नोजल से आपको इसका छिड़काव करना है, बीडी साइट कोई भी हो, किसी फसल का हो। और अगर मान लीजिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार उड़द मूंग राहर में हैं, तो इमाजी थापर नाम की दवा 300 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में, या 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। फ्लैट फैन नाजल उपयोग करना बहुत आवश्यक है, नमी होना खेत में बहुत जरूरी है, अन्यथा दवा का प्रभाव ठीक से नहीं मिलेगा। अब सोयाबीन की हम बात करते हैं। सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे नींदानाशक हैं जो खड़ी फसल पर उपयोग किए जाते हैं, उसमें मुख्य रूप से इमाजी थापर जो पुराना हर्बिसाइड है, इसकी मात्रा 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। नींदा की सघनता है, मिट्टी भारी है तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मिट्टी हल्की है, नींदा की संख्या अगर कम है, दो परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो तो 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। छिड़काव का समय 20 से 25 दिन होता है, जब नींदा 5-6 पत्ती का होता है, इससे ज़्यादा पत्ती का अगर होता है वो कड़ा हो जाता है तो उसमें दवा की जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। अगली दवा है क्यूजेलोफाप इथाइल, इसका 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर छिड़काव करें तो केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवार सोयाबीन से समाप्त होंगे। अगर सोयाबीन में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लोरीम्यूरान इथाइल 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से आपको छिड़काव करना है। अगर दोनों प्रकार की नींदा हैं तो क्यूजेलोफाप इथाइल 50 ग्राम और क्लोरीम्यूरान इथाइल 15 ग्राम, इनका मिश्रण जो बाजार में उपलब्ध है उसको आप ले सकते हैं, प्रभाव अच्छा पड़ेगा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त होंगे सोयाबीन में। और इसके बाद एक दवा और है जिसमें इमाजी थापर और इमाजा मार्क्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो इमाजी थापर से बच जाते हैं, अगर आप इमाजा मार्क्स और इमाजी थापर वाले कॉम्बिनेशन जो बाजार में 1 cc के रूप में, पैक के रूप में, मिक्सचर के रूप में आती है, अलग से आपको पैक नहीं खरीदना है इसके, इसमें दोनों दवाइयाँ समाहित होती हैं, इसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इसको अगर छिड़केंगे तो पूरे नींदा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त हो जाएंगे। समय वही है 20 से 25 दिन बोनी के आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जो अगली जो नई दवा है वो है क्यूजेलोफाप पी टेफुराइल। ये नई दवा है, बहुत प्रभावी दवा है, इसकी जो मात्रा है मात्र 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, इसमें लगभग दोनों प्रकार के नींदा समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला जो नया फार्मूला आया है वो है प्रोपा क्यूजा फाप, इसकी 75 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और इसमें दोनों प्रकार की नींदा नियंत्रित होते हैं। अंत में जो दवा है वो है, दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक ही पैक में आता है, एक ही शीशी में आता है, सोडियम एसीफ्लोरोफेन और क्लोडीना फाप इथाइल का कॉम्बिनेशन है। ये दवा दोनों प्रकार के खरपतवारों को समाप्त करती है और इसकी जो मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व होती है। तो इन नई दवाओं का उपयोग करके हमारे किसान भाई सोयाबीन में इसका उपयोग करें और अच्छी उपज ले सकते हैं। उनके नाम बताए हैं, उनका उपयोग करके आप इन फसलों से अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि खरीफ मौसम में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नींदा की उपस्थिति के कारण होता है। किसान भाइयों को एक जो प्रैक्टिस करते देखा हमने अपने ज़िले में कि वो नींदा नाशक के साथ समय और पैसा श्रम बचाने के लिए नींदा नाशक में इल्लीमार यानी कीटनाशी दवा या फूल अच्छे आने वाली दवा का मिश्रण बना के डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारे किसान को ये जानकारी ना हो कि ये दो दवाएं आपस में मिला के डाली जा सकती हैं, तब तक वो ऐसे प्रयोग बिल्कुल ना करें। होता क्या है कि जब दो प्रकार की दवाएं, विपरीत गुणधर्म वाली दवाएं आपस में मिला दी जाती हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते, तो ऐसे में ना तो इल्ली या कीट ठीक से नियंत्रित होता है और ना ही नींदा पर प्रभाव उसका बहुत अच्छा पड़ता है, ना ही फूल वाली दवा बहुत अच्छे से काम करती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रयोग वो अपने मन से जो करते आ रहे हैं या दुकानदारों ने उनको जो सलाह दी है उसको मान के ऐसे वो प्रयोग अपने खेतों पर कर रहे हैं, ये प्रयोग तत्काल रूप से बंद कर दें, अन्यथा उनको फायदे की जगह हानि हो सकती है। और जब तक हमारे किसान भाइयों को इन दो रसायनों को मिलाने की जानकारी ना हो तब तक इस प्रकार का उनको कोई भी काम अपनी खेती में प्रयोग के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए।
2: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक।
0: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाए मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 13 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें मध्य प्रदेश के भैरव सिंह चौहान को वर्ष 2025 के लिए लोक संगीत की निर्गुणी परंपरा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद जाएंगे। वे गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश प्रस्तावों, उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सरकार के सहयोग पर चर्चा करेंगे। संवाद में विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सहित नए क्षेत्रों में निवेश पर भी चर्चा होगी। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप और निवेशक तथा उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। उन्होंने लोगों से सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और अपने परिवेश में हरियाली बढ़ाकर इस त्यौहार को प्रकृति का उत्सव बनाने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंती भाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 2

0: लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी संवाददाताओं को जानकारी दी।
1: पहले जहाँ हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा की कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू। इंदौर अबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में शामिल है, भोपाल से सरजा सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने हेमू कलानी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री शुक्ल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और तिरंगा यात्राएं लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करेंगी। इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में भी तिरंगा यात्रा, रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नीमच में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर और राजेंद्र शुक्ल रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को भूमि के 4 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल की करोंद कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन और हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि सुरक्षित रखने की भी अपील की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है। उन्होंने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और खरगोन सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। प्रभावित जिलों में कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है जबकि खरगोन में अपरवेदा बांध के गेट खोले गए हैं और कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और खंडवा जिले में पुलिसकर्मियों ने अब तेज बाढ़ के बीच में बहाव में फंसे एक दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला है।
3: बारिश का समय है, ऐसे समय में जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में जहां जहां अभी फंसे थे, रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ।
0: अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में झाबुआ की आकांक्षा अभियान के तहत 62 अधिकारियों द्वारा 146 शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 62.5% मिलने पर कलेक्टर ने उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा के ग्राम सरईमाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत बांझ निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 134 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कटनी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत में आयोजित कुकिंग कॉम्पिटिशन में 25 स्व सहायता समूहों ने भाग लिया। पन्ना जिले के सरकुहा गांव में पट्टा खदान में काम के दौरान मजदूरों को 16.96 कैरेट का अत्यंत दुर्लभ जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और इंदौर जिले के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राला मंडल में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर 150 आपदा मित्रों को आपातकालीन स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। और प्रदेश की खुशी दावाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:21 हो चुके हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को हमारा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तलाश फिल्म के गीत के साथ। इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, बोल हैं मजरू के, संगीत है एसटी बर्मन का। फरमाइश आप सभी की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र में मिला दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। गांव और डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद हरियाणा से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की। गुजरात गांधीग्राम से ये फरमाइश हमें मिली प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। शाहजी नगर देगलूर, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं तलाश फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

और आइए अब सुनते हैं समाधि फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। भूले मजरू के संगीत है राहुल देव बर्मन का। फरमाइश आप सभी की, कंवर कॉलोनी बड़वाह से ये पत्र में मिला प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली का। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से फरमाइश भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार। झज्जर हरियाणा से यह फरमाइश हमें मिली बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। दतरेंगी से भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का गीत आशा जी की आवाज़ में।

समाधि फिल्म का गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में। बोल थे मजरू के संगीत था राहुल देव बर्मन का। इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश आज़ाद फिल्म से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत राहुल देव बर्मन का। फरमाइश आप सभी की। नेपाल पहले सागर से ये पत्र हमें मिला। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौंदिया, सुजीत, रमाकांत दुबे और उनके तमाम साथियों का। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। और फरमाइश भेजने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की फरमाइश है। और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये फरमाइश में मिली विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू की। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से एक और व्हाट्सएप फरमाइश हमें इसी गीत के लिए मिली। भेजने वाले हैं दातार सिंह शेखावत, संगीत कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं। सुनते हैं आज़ाद फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

आज़ाद फिल्म के गीत के बाद मनचाहे गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, धुन हैं शंकर जयकिशन की। फरमाइश है आप सभी की भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश में मिली हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा

और नोखेलाल वर्मा की। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालूद छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर तामुरिया की। भूड चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह और एमएस अब्बासी की फरमाइश में प्राप्त हुई। और इसी गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान फरहीन फारिया और ताहिरा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं फैज़ अनवर का लिखा गीत, संगीत है निखिल विनय का, आवाज़ सोनू निगम की, एल्बम जान।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुचित्रा की आवाज में अरुण राज के बोल। संगीत है रहमान राजन का, एल्बम है दम तेरा।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज में कैलाश खेर का ही लिखा गीत। संगीत है परेश नरेश कामत का और एल्बम है कैलाशा।

0: कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
7: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष

0: श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

0: ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। स्वागत तमाम सुनने वालों का। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस शहरों के साथ। गायक कलाकार हैं खिलावन सिंह पटेल।

इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम मस। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं आल्हा। कलाकार हैं उमा शंकर सेन।

भारति भारत पर अभिमान, चारों युग से चल रही 64 कला निधान। हिंद के समान देश दृष्ट ना दिखाई दे, यहाँ के पशु पंछी सब न्यायकारी हैं। सीता का हरण जब किया दशकंधर ने, रावण की देह गिद्ध चोचन बेदारी है। रीछे और बंदर मिल राम को दिलाई सिया, सोने की लंक तहस नहस कर डारी है। बोधन कब भारत में आरत सुन दीन ने कहे, दुष्ट दुराचारियों की जर खोद कर डारी है।

समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम विधाता।

और आइए चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अनजान का लिखा गीत। संगीत है राजेश रोशन का, आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम वक्त वक्त की बात।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अमित खन्ना का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और टीना मुनीम की, फिल्म का नाम मनपसंद।

मन पसंद फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, 9 बजने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी देर में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुन।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पीके फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में, कभी उस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था, और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई, जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था।

सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालाचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

0: फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।
1: बंकर

0: रुक जाए दोनों आँखें, मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए दोनों आँखें, मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
3: माना माना मैं

0: जस्टिस चौधरी। पाम पाम पाम
1: पाम ए मम्मिया मम्मिया।

0: Love.
1: Mamma mia.
0: Bom bom.
1: Oh, mamma mia.
0: Bom bom.
2: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।
1: मैं

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
2: मेरी

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूम

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।
3: बदला

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

0: जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।
1: कहती है मुझे तो हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई,
2: हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई,
0: ये था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
3: आज के फनकार।

अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं, क्लबों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, मैराथन, साइक्लोथॉन, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कल यानी 13 अगस्त को

तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, जबकि जिला मुख्यालय पर 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने पिछले दिनों आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आगरमालवा सुसनेर और नलखेड़ा के 3 सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने सुसनेर में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। श्रावण माह के दौरान आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में महारुद्राभिषेक, पूजन, भजन कीर्तन और विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 19 शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में ग्राम तनोडिया में आयोजित शिविर में 253 आवेदन प्राप्त हुए। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और महिलाएं उपस्थित रहीं। अभियान के तहत जिले के नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर और आगरमालवा में जनपदवार क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 शिविर तथा शहरी क्षेत्रों में 1-1 शिविर लगाया जाएगा। वहीं तनोडिया में आयोजित जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले में पंजीकृत 280 युवाओं में से 113 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित किया गया। स्वरोजगार योजनाओं के तहत इस शिविर में 63 हितग्राहियों को 52,03,000 रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR इंदौर के वैज्ञानिकों और आगरमालवा कृषि विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले के ग्राम सोनचिड़ी, आगाखेड़ी, परसुखेड़ी और पालड़ा का भ्रमण किया। इस दौरान सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया गया और किसानों को वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड MPIDC द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित और प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई। उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552G के आगरमालवा जिले के ग्राम आमला से चमली तक के 2-लेन मार्ग को अब 4-लेन में बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्व सिद्धपीठ माँ बगलामुखी देवलोक निर्माण के प्रस्तावित और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर स्वीकृत सभी कार्य को समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर जिला चिकित्सालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने महिलाओं को स्वच्छता और 4 माह तक अनिवार्य रूप से स्तनपान कराने के सही तरीके की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए SP कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर जनपद पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्रोत स्तर पर गीले, सूखे और सैनिटरी अपशिष्ट को अलग अलग रखने, घर घर कचरा संग्रहण, कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए आगरमालवा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने जिले में प्रस्तावित होल्डिंग एरिया के लिए चिन्हित भूमि का बीते दिनों निरीक्षण किया। वहीं युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत आगरमालवा के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में विभिन्न जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विद्यार्थियों ने जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आगरमालवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। फोन नंबर हैं 2408 45 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। श्रोता कॉल लगाकर किसानी से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुनिएगा,

240845 और STD कोड है 07582। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: श्रोताओं, पुनः स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूं मनोज सक्सेना और मेरे साथ हैं भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तवार जी। सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर। बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं व्हाट्सएप के जरिए। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया कि जो डायबिटिक व्यक्ति है उसको डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखते हैं, ये कब तक लेनी चाहिए?
1: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जिनको मधुमेह है उनको मोटापा भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच होना स्वाभाविक है। जब कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं तो इसमें क्या होता है कि LDL नाम का कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ा हुआ आता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आते हैं और तीसरा HDL नाम का कोलेस्ट्रॉल है, जिसके बढ़ने पर हम लोग खुश होते हैं, वो कम आता है।
0: अच्छा,
1: तो इसीलिए डॉक्टर आपको दवा चालू करते हैं। प्रायः शुगर कंट्रोल करने पर भी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाता है। थायराइड के मरीजों में भी ऐसा होता है, पर फिर लगता है कि जब रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो मरीज बोलता है कि आप सब क्या जरूरत है खाने की। रिश्तेदार बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, अरे बंद कर दो, अब तो नॉर्मल हो गया।
0: हाँ,
1: तो नेक्स्ट विजिट पे जब मरीज आता है तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये गोली अपने बंद कर दी, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो क्या ऐसा करना चाहिए, ये एक बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है वो कोलेस्ट्रॉल तो कम करती है, सामान्य कर देती है, जो कि बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें जब वो सामान्य हो जाता है तो उसको बनाए रखने की जरूरत होती है। बार बार आप रोलर कोस्टर राइड पे जाएंगे तो पल में मासा पल में तोला, वो अच्छा नहीं है
0: जी।
1: लंबे समय तक, सालों साल तक अगर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है हृदय की धमनियों में नहीं जमता, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं होगा, उसे खून का थक्का नहीं बनेगा, वो फूटेगा नहीं, तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, लकवा नहीं लगेगा। तो अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कोई बुरी बातें नहीं है जो कि आपका विशेषज्ञ योग्य है देखने के लिए, तो आपको लंबे समय तक, मैं कहूंगा जिंदगी भर, आपको ये दवा खानी चाहिए।
0: सर, एक और समीकरण यूं मेडिकल में देखा जाता है कि व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो क्या है?
1: देखिए, ट्राइग्लिसराइड मार्का है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ट्राइग्लिसराइड मार्का है आपका फैटी लिवर का, ट्राइग्लिसराइड मार्का है भविष्य में होने वाली डायबिटीज का, ट्राइग्लिसराइड मार्का है कि आप शराब पीते हैं, अनियंत्रित शराब पीते हैं, ट्राइग्लिसराइड मार्का है कि शायद हो सकता है थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है।
0: अच्छा।
1: हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। तो ये एक सूचक है, तो ये सूचक है तो इसको 500 के अंदर तो रहना ही चाहिए। 500 के ऊपर होगा तो पैंक्रियाटाइटिस भी होने की संभावना होती है, और पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो वैसे ही डायबिटीज हो जाता है।
0: अच्छा सर, फैटी लीवर जिसको है उसको नेचुरल तरीके से क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है?
1: देखिए, फैटी लीवर होने की अवस्था ही ऐसी है कि लीवर को सामान्य तौर पे जो वसा फैट दिया जाता है उससे ज्यादा वसा फैट आ रहा है, लीवर उसको पाचन नहीं कर पा रहा। तो वो लीवर में जमा हो जाता है। जब जमा होगा तो लीवर फैटी सेल्स भी ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा रिलीज करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि शुरुआत होती है और वो फिर बढ़ती जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप वजन कम करें, मधुमेह की सही दवा खाएं, और अगर 500 के ऊपर ट्राइग्लिसराइड है तो उसको भी नियंत्रित करें।
0: सर, फैटी लीवर क्या डायबिटीज होने का संकेत है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि फैटी लीवर भी प्री डायबिटिक स्टेटस है। शुगर आपका 100 के ऊपर आ रहा है, 126 के अंदर आ रहा है, वो भी एक प्री डायबिटिक स्टेटस है, जिसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। भोजन के 2 घंटे के बाद 140 से 199 के बीच में शुगर आने को भी हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, ये भी प्री डायबिटिक स्टेटस है। HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में है, 6.5 नहीं हुआ है
0: जी, जी।
1: तो इसको भी प्री डायबिटिक स्टेटस कहते हैं। भोजन के 2-3 घंटे के बाद आपने बताया था ना, अचानक से भूख लगती है, थरथराहट कपकपी, वो भी प्री डायबिटिक स्टेटस है। गर्दन का काला होना भी प्री डायबिटिक स्टेटस है। बीमारी आने से पहले आपको बहुत आगाह करती है, पर बशर्ते आप में वो होनी चाहिए बात कि आप उस चीज को, उसके पदचापों को सुन लें और उसको रोकने का प्रयास करें।
0: वाकई श्रोताओं, एक अनुभवी व्यक्ति से जब हम बातें सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम सजग नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। मित्रों, आपके शरीर में अगर कुछ ऐसा लगता है जो कुछ अनियमित हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से

0: सलाह लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। चलते चलते हमारा मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, नंबर है 8878112343। इस नंबर पर आप अपने विचार और संदेश हम तक भेज सकते हैं। अब स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इसमें कॉल लगाकर अपनी खेती किसानी संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञों से समाधान ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 2408 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, आइए सुनते हैं फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: राहतगढ़ से बोल रहे सर, प्रमोद हर बार।
0: क्या करते हैं आप राहतगढ़ में?
1: सर वो ईंटों ईंटों का धंधा करते हैं, खुराई और सागर से लेके राहतगढ़ बेचते हैं।
0: अच्छा अच्छा, यानी खुद नहीं बनाते हैं। बहुत ही सुंदर है राहतगढ़ आपका
1: जी।
0: कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि सागर जिले में एक इतना अच्छा स्थान है जहाँ पर घूमने के लिए जाया जा सकता है।
1: किला है,
0: हाँ,
1: बनेनी घाट है, शिव मंदिर है, 108वें है यहाँ पर।
0: बहुत ही अच्छा लगता है और जंगल भी बहुत ही अच्छा है। तो जंगल को और हरा भरा रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग?
1: जंगल को हरा भरा रख, पेड़ कटाई न करे अकेले और देखा राखी हुए अकेले।
0: हाँ, और साथ ही हम वृक्षारोपण जरूर करें इस मौसम में। हाँ, और केवल वृक्षारोपण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल करना, ये भी हमें बखूबी आना चाहिए
1: जी।
0: तो इस बार कुछ लगाने का इरादा है आपका क्या?
1: हाँ जी, फूलों वूलों के गेंदा में ना के पेड़ लगाए घर पे।
0: नहीं, आप कोई वृक्ष लगाइए जिससे कि पंछियों को छाया मिले और लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल सके।
1: हाँ जी जी सर।
0: नीम का पेड़ लगा सकते हैं, पीपल, बरगद, ऐसे पेड़ हैं जो कहीं भी लगाए जा सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा हो तो आप उसमें जाके योगदान जरूर दें अपना।
1: अपने बड़े पुल के पास से ही जंगल लगवाए सर।
0: अच्छा अच्छा, तो लगाइए आप, अपने दोस्तों के साथ मिलके वृक्षारोपण जरूर करें।
1: जी जी।
0: तो बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: ओ, गाना वो वाला सुनवा दी सर, वो मेरे किशोर कुमार को गाना है, देखो वीर जवानों। खुद पे इल्जाम ना आए सर, फिल्म को तो नहीं है, एक बार आपने सुनवा दो आकाशवाणी से, सुनो तो गाना अच्छा लगो। तो
0: चलिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम?
1: सोनू जैन बोल रहे हैं सर, बंडा से।
0: सोनू भाई क्या करते हैं बंडा में?
1: सर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सर।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया चल रहा काम आपका?
1: जी सर, जी सर की कृपा से अच्छा चल रहा है।
0: जी भाई, सोनू भाई एक काम जरूर करें कि इस मौसम में वृक्षारोपण करने का प्रयास करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ।
1: जी सर, जी सर।
0: तो कभी किया है आपने वृक्षारोपण?
1: जी किया है ना, हमारा यहाँ क्या नाम से बांदरी रोड पर मकान बना था।
0: हाँ हाँ।
1: तो वहाँ पे हमने लगाए थे ना पेड़, अच्छा बड़ा हो गया सर पेड़।
0: कौन कौन से पेड़ लगाए थे आपने?
1: सर एक पेड़ लगाया था सर।
0: अच्छा अच्छा, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत सारे पेड़ जरूर लगाए, अपने दोस्तों को साथ ले जाएं और पेड़ जरूर लगाएं। और साथ ही जैसे आप बोल रहे हैं कि जो आपने पेड़ लगाया था वो बड़ा हो चुका है, तो आपको खुशी मिल रही होगी देख के?
1: जी सर खुशी होती है ना सर।
0: कौन सा पेड़ लगाया था आपने?
1: वो सर यहाँ बंडा में पूरे मार्केट में वही पेड़ लगे हैं, उसका नाम नहीं है पेड़ का मालूम।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर,
0: छायादार होगा?
1: हाँ छायादार है सर।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, वृक्षारोपण जरूर करें। और बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना सुनना है सर राजपूत फिल्म का, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। हम दुकान खोलने आते हैं सुबह तो FM चालू कर लेते हैं और जब जाते हैं जब बंद करते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर राजपूत फिल्म का ये गीत।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो,
5: नमस्ते सर।
4: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत करते हैं आपका।
5: जी सर।
4: अपना नाम बताएं।
5: सोमपाल सिंह।
4: सोमपाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: हम गोरझावर से बोल रहे हैं सर।
4: क्या करते हैं सोमपाल भाई आप?
5: पान कटा पड़ा है सर।
4: बहुत ही बढ़िया। कौन कौन सी वैरायटी के पान रखते हैं आप अपनी दुकान पर?
5: सब रखते हैं सर। कटक भी रखते हैं, बंगला भी रखते हैं, मीठी पत्ती भी रखते हैं, देसी भी रखते हैं।
4: तो सबसे ज्यादा शौकीन कौन से पान के हैं लोग?
5: बंगला खाते हैं सर।
4: हाँ, सागर का बंगला।
5: हाँ
4: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया रहता है। पुराने समय में उसे तांबूल भी कहते थे।
5: हाँ सर। आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं जयशेखर।
5: जयशेखर।
4: हाँ
5: जी सर।
4: तो सोमपाल भाई, वृक्षारोपण करने का मौसम आ चुका है।
5: हाँ लगाते हैं सर।
4: कौन कौन से लगाते हैं आप?
5: सब वैरायटी लगाते हैं सर, ज्यादातर के आम लगाते हैं।
4: अच्छी बात है। आम से छाया भी मिलती है, ऑक्सीजन हाँ। भी मिलता है और साथ ही पक्षियों को बैठने के लिए, खाने के लिए भी हो जाता है।
5: हाँ सर, सर तो वही में लगाते हैं।
4: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ों को कटने से भी जरूर बचाएं आप।
5: जी सर।
4: बताएं सोमपाल भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
5: वो आया सावन झूम के सुना देना सर।
4: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर आया सावन झूम के, इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: स्वागत है आपका फोन करेंगे सुने में।
0: जी सर,
1: नाम बताएं अपना।
0: सुरेंद्र साहू।
1: सुरेंद्र भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम बंडा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा सुरेंद्र भाई, वृक्षारोपण के बारे में क्या कहना है आपका?
0: वृक्षारोपण के बारे
1: हाँ।
0: में वृक्षारोपण के बारे में ये कहना है कि सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सुरक्षा करनी चाहिए, उससे वातावरण अच्छा रहता है।
1: और आज जो हम पानी की कमी देख रहे हैं, ये बहुत हद तक दूर हो जाती थी जब हमारे पास बहुत अच्छे जंगल होते थे, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते थे। अब लगातार घर बनाने और दूसरे कामों के लिए हम पेड़ काटते गए और जंगल सिमटते गए, धीरे धीरे बारिश भी सिमटने लगी है।
0: जी, उसी के कारण है।
1: हाँ अच्छा, और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए।
0: जी।
1: तो आप करते हैं, कैसे करते हैं देखभाल आप?
0: हमारे यहाँ तो लगे हैं, अभी हम लोगों ने लगाया था, दुकान के सामने भी पेड़ पौधे लगे हमारे।
1: अच्छा अच्छा, हर साल इस मौसम में जरूर लगाएं आप?
0: सब हम लोग संगठन है, सब लगाते रहते हैं।
1: चलिए ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और बता दें कि गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: बॉर्डर फिल्म का सुनना।
1: बॉर्डर का कौन सा?
0: संदेश आते हैं।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
1: जी। नमस्ते सर
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी, उर्मिला ठाकुर बात कर रहे हैं, ग्राम राम खीरिया तहसील रहली से। सर कुछ अभी शादी आदि में लगे रहे और घर पे भी काम था।
0: अच्छा, किन किन लोगों की शादी में गई आप?
1: जी अभी 4-5 जन की थी, लेकिन अभी भांजी की थी हमारी।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो शादी में क्या क्या किया आपने, हमें कुछ बताएंगी आप?
1: जी सर, एंजॉय किया है
0: अरे
1: शादी में तो।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अच्छा, पहले की जो शादियां होती थी तो उसमें घर की महिलाओं को खाना बनाने की जिम्मेदारी मिल जाती थी,
1: हाँ,
0: तो
1: सर।
0: ऐसे में आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते थे, और अब अच्छा हो गया है कि भाई बाहर के लोग आके बना जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो गांव में भी यही हो रहा है आजकल?
1: हाँ सर, गांव पे भी अब तो सब जगह मतलब वो आती है।
0: हाँ हाँ
1: खाना बनाने वाली।
0: हाँ हाँ
1: पहले से।

0: जाती हैं हम लोगों हाँ, के यहाँ तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ क्या है ना सर, अब कोई किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहता
1: सही
0: सब लोग आते हैं तो बैठ के खाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं।
1: हाँ
0: हाँ और हम लोग भी घर पे अब देखो रिश्तेदारों को देखे कि घर का काम करें
1: हाँ,
0: तो इस वजह से नहीं हो पाती
1: और फिर तैयार होना भी पड़ता है, बच्चों को भी देखना है।
0: जी सर
1: ये बहुत सारे काम हो जाते हैं
0: जी, मेहमानों को देखना, बच्चों को देखना
1: हाँ,
0: साथ में बड़ों को भी देखना
1: हाँ सही कहा
0: कारण से।
1: जी जी जी तो उर्मिला हमें कुछ बताएं कि वृक्षारोपण के लिए महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए।
0: जी सर महिलाओं को तो ऐसा है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए घर के साथ साथ।
1: हाँ हाँ
0: हाँ घर तो सब संभालते ही हैं
1: बिल्कुल
0: सब महिलाएं, लेकिन उनको ये मतलब हमारा अनुरोध है कि वो पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें देखभाल करें।
1: बहुत ही अच्छी
0: तो पेड़ काट के लकड़ी लाते हैं सब लोग।
1: हाँ हाँ
0: तो हमारा यही कहना है कि पेड़ कम से कम काटें।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और आप सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं। देखिए बारिश की भी कमी कितनी ज्यादा कर रही है हम लोगों को
0: जी,
1: इसकी वजह भी वही है कि हमने बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई कर डाली।
0: जी सर आप आओ हमारे गांव सर।
1: बिल्कुल आएंगे
0: रमखिरिया।
1: हाँ हाँ
0: जी सर बहुत खूबसूरत गांव है, नदी है पास में।
1: हाँ हाँ हाँ
0: मंदिर हरा भरा है मतलब गांव हमारा।
1: हाँ हाँ जंगली जानवर भी खूब होंगे आपके यहाँ तो।
0: हाँ सर है ना।
1: अरे फिर तो आना चाहिए।
0: मोर है, हिरण है मतलब।
1: हाँ हाँ हाँ उर्मिला बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको।
0: सर हिंदुस्तान की कसम का है वो जलवा तेरा जलवा।
1: उर्मिला हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर हिंदुस्तान की कसम इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सर, जयराम जी।
1: जयराम जी, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका।
0: हम ग्राम चारनामल संपूर्ण जिला सागर।
1: अपना नाम बताएं।
0: हमारा रामचरण नाम सर, रामचरण पटेल।
1: क्या करते हैं रामचरण भाई?
0: किसान करते हैं सर, पूरा उरा दिन भाव हो रहे और पानी गिर रहा सर कम।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो पानी की मांग है ऊपर वाले सुन ले तो आपको सही है।
1: हमें रामचरण भाई ये बताएं कि बारिश नहीं हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं?
0: कारण है जी बिल्डिंग कटत रही तो और माने पौधा पहाड़ों में जी झाड़ कट रहे, कटिंग हो रही है, संसार नहीं हो पा रहा।
1: हाँ हाँ,
0: और जो प्रदूषण

0: दुर्योधन के साथ रामायण कम बारिश कम हो रही।
1: देखिए रामचरण भाई, हम आप चाहें तो बहुत हद तक हम अपने प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। लोगों को वृक्षों को काटने से बचाएं, लोगों से कहें कि वृक्ष अगर काटेंगे आप तो हमें बारिश और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।
0: सर ऐसा करने चाहिए सर्वजनक हर जन को, मतलब जो पेड़ है आषाढ़ के समय में अच्छे पौधे लगाने चाहिए, पेड़ फल खाने के और बिना खाने के भी अच्छे छाया दे, लकड़ी भी देते। सर
1: वृक्षारोपण करें लेकिन साथ ही ये प्रयास भी करें कि उनकी देखभाल भी हो सके।
0: जी हाँ ऐसा ही करने चाहिए हर जन को, हर व्यक्तिगत वाली बात है भाई साहब।
1: हाँ
0: और क्या, वो सभी को ऐसा करने चाहिए, एक दो पेड़ लगाए साल में ज्यादा नहीं लगा सकते। तो
1: सही कह रहे हैं आप,
0: कटिंग कम करें, बारिश उसी से बढ़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो रामचरण भाई बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: फिल्म मिलन, फिल्म का।
1: मिलन का कौन सा?
0: सावन का महीना पवन का रसूर।
1: आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर मिलन फिल्म का ये गीत।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो।
1: हाँ भाई साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करें गीत सुने में। अपना नाम बताएं।
1: जी बालमुकुंद रेकवार, एडवोकेट।
0: बालमुकुंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर गोरझामर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं आप?
1: सर केसी और देवी।
0: अच्छा अच्छा, तो किस प्रकार के केस लेते हैं आप?
1: सर सभी प्रकार के लेते
0: हैं। अच्छा, और बारिश ना होने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्यों नहीं हो रही बारिश?
1: पानी ना होने का कारण मेन तो यही है कि ये पेड़ वगैरह भी कटते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: प्रदूषण का भी कारण है सर।
0: हाँ
1: जी,
0: तो हम कैसे रोक सकते हैं पेड़ों को कटने से?
1: सर अब क्या बताएं, वो तो यार हर जगह फ्लाइटिंग और दुनिया भर की हो रहा है।
0: हाँ हाँ,
1: तो इस कारण से भी होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे बालमुकुंद जी, बहुत ही बड़ी समस्या है। हम पेड़ों को कटने से कैसे बचाएं?
1: जी जी सर,
0: तो इसका एक उपाय ये हो सकता है कि हम अपने तरीके से इस मौसम में खासतौर से हरे भरे पेड़ों को लगाने का प्रयास जरूर करें।
1: जी जी,
0: और लगाएं और साथ ही उनकी देखभाल भी करें।
1: जी सर जी।
0: तो आपने कभी लगाए हैं कुछ पेड़?
1: जी सर, हमने लगाया, हमारा खेत भी है सर।
0: तो कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं आपके यहाँ?
1: जामुन के पेड़ भी लगे हैं, बेही के पेड़ भी लगे सर। हाँ तो सर बढ़िया, बहुत अच्छा बगीचा टाइप का बना हुआ है।
0: तो इस बार और लगा दीजिए पौधे कुछ।
1: जी जी लगाएंगे सर।
0: जी बहुत ही अच्छा लगा बालमुकुंद जी आपसे बातचीत करके, और बता दें कि गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: सर कोई किशोर कुमार जी का सुना दीजिए।
0: किशोर कुमार का कोई भी?
1: जी सर।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नो।
1: और अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है कि हमें अपने आप में अनुशासन बनाए रखना है। हमारा देश तभी तरक्की कर पाएगा, हम तरक्की कर पाएंगे अगर हम अनुशासित होंगे। अपने देश की छवि को लेकर, अपनी छवि को लेकर, अपने घर, अपने प्रदेश की छवि को लेकर हम अनुशासन में रहेंगे और दूसरे लोग भी हमें देखकर अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन में वो सारी बातें आ जाती हैं जो किसी देश की तरक्की में, देश के विकास में सहायक होती है। तो यही होगी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनोद यादव और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: फोन करें, गीत सुने। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इसमें कॉल लगाकर अपनी खेती किसानी संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञों से समाधान ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 2408 45 और सागर का स्टडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल शिवास संतोष और शिवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
2: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
2: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
2: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
2: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
3: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
4: अरे दिलीप।
5: हाँ सुभाष।
4: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
5: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
4: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
5: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
4: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
5: तो फिर?
4: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
5: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
4: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
5: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
6: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
4: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
6: Is that right? You black monkey?
5: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
6: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
4: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
6: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
4: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
6: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
4: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
6: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
7: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
5: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
7: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
5: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
7: और अपने सुभाष बाबू?
5: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
8: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
7: क्या हुआ सुभाष बाबू?
8: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूट

0: रुकते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
1: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
1: ये अखबार कहां गए?
3: हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
4: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। बुलंद किया,
5: जय हिंद,
6: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे।

0: सुभाष चंद्र बोस। और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इसमें कॉल लगाकर अपनी खेती किसानी संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञों से समाधान ले सकते हैं। फोन नंबर है 240845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
4: क्या कहते हैं, दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा, तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
5: ऑफ कोर्स
4: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
5: यस।
4: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की। मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
5: जी।
4: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने